0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री

0: मंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरूआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेरे वेब को 213.7 मीटर तथा 1404 किलोहर्ज में यो आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्र हो, जिसलाई हालले एफएम कञ्चनजंघा को 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एयर मोबाइल एप में पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, यतिखेर बिहान को 7:05 गइरहेको छ अनि हामी लिएर आएका छौं पुराना हिन्दी फिल्मी गीतहरूको संगालो कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज। आउनुहोस्, पहिलो कोसे लिएका छौं बलिउड जगतको एक नाट्य चलचित्र कसौटीबाट, जुन फिल्म रिलीज भएको थियो 1974 निर्माण एवं निर्देशन गर्नुभएको थियो अरविन्द सेनले। श्रोता, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी र प्राणले मुख्य भूमिकामा किरदार निभाउनु भएको यस चलचित्रको पहिलो गीत सुनाउँदैछौ लता मंगेशकरको आवाजमा, संगीत दिनुभएको छ कल्याणजी आनन्दजीले।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा SIR अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
5: गत 30 मईदेखि 28 जुन 2026 सम्म BLO-हरूले घर घरमा गए

0: हजुर, भोलि बिहान फेरि यस्तै जानकारीहरू लिएर 11 तारिक जुनमा घटेका घटनाहरूबारे जानकारीहरू बटुलेर तपाईँहरू समक्ष आउनेछौ। हवस् त, आजलाई बिदा चाहन्छौ।
1: नमस्कार।
2: आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,000

0: 1399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया

0: ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्चीव ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम साइरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat G. Ramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our correspondent.
4: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over 3 consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen

0: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
1: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 सम्म बीएलओहरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
0: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
1: 1 जुलाई 2026 सम्म 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
0: फारम ईसीआईएनईटी एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
1: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
2: अपने उज्जवल भविष्य को दे नई दिशा सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ। उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय सिक्किम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कार्यक्रम के लिए अभी आवेदन करें। अनुभवी प्राध्यापक, आधुनिक सुविधाएं और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण सब एक ही परिसर में। यूजी और पीजी प्रवेश हेतु सीयूईटी अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 मई से 10 जून 2026 तक। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए www.cus.ac.in पर जाएं।
3: श्रोता सुन्नु भएको छ हिन्दी फिल्मी गीतहरू आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बिहानको प्रसारण सेवामा सुनौ यो कोशली सुनिति चौहानको आवाजमा।

कभी तुमको भी एहसासे मोहब्बत हो तो आ जाना, किसी टूटे हुए दिल की जरूरत हो तो आ जाना। हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात जगता है, तुम्हारी भी अगर ऐसी ही हालत हो तो आ जाना। जमाना प्यार का दुश्मन है, तुम्हें आने नहीं देगा, मगर कभी कोई आने की सूरत हो तो आ जाना। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते, न जी चाहे तो मत आना, तबीयत हो तो आ जाना। और आप आ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज करती हूं आपका वेलकम, स्वागत और खैर मकदम भी। और आपको क्या करना है, जल्दी से खोलना है अपना फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैब, जो भी आपके पास मौजूद है, fmgoldair@gmail.com पर भेजना है अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ शेरो शायरी या कोई ऐसी बात जो दिल छू जाए तो बस बात बन जाए, है ना। और व्हाट्सएप मैसेज भी अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए जनाब, 9868687 53। जी हाँ, और इस सब के साथ टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी। जी हाँ, क्योंकि आज मैं पूछने वाली हूँ दिल का मेल बॉक्स में आपसे एक सवाल, जिसका सही जवाब भी आप लिखकर भेजेंगे अपने मैसेज में। तो गौर से सुनिए, आपको आज बताने हैं उस गीत के बोल जिसमें हमारे प्यारे किशोरदा, मतलब बहुत ही प्यारे किशोरदा ने मेल और फीमेल दोनों वॉइसेस में गाया है। साथ ही ये गीत किस फिल्म से है ये भी आप लिखकर भेज दीजिए। फिलहाल रुक कर लेते हैं आपके मैसेजेस का, जो आप बड़ी ही प्यार से भेज रहे हैं। तो जनाब, पहला मैसेज जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आया है सीधा कहां से, जगह, हाँ, शिवाजी चौक कटनी से आया है ये मैसेज। लिखते हैं कि जिसकी निगाहों में किसी का प्यार जब रच बस जाता है, तो प्यार की खूबसूरती, प्यार की समीपता जिंदगी में अपना बनाने के लिए आतुर हो जाती है। लेकिन किसी के प्यार को पाने के लिए, किसी के प्यार को जीतने के लिए, प्यार करने वाले को डर रहता है कि किसी राह में किसी का प्यार दुख ना पहुंचा जाए, प्यार के सपने बिखर ना जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही, और इसी बात को साबित करती एक शायरी मुझे याद आ रही है। बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, नजरों से मिलती हैं अक्सर नजरें, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता, है ना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और एक और मैसेज जल्दी से शामिल कर लेते हैं, फिर सुनेंगे एक खूबसूरत सा गाना। अनु बड़जात्या जी का मैसेज खोल लिया है मैंने और लिखती है, डियर नाज, ये आपके लिए। थैंक यू। उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं, आंखों में एक सुकून जैसे चांदनी रात की शांत झील, हंसती है तो माहौल हल्का हो जाता है जैसे बगीचे में बहार आ गई हो, बातों में मिठास, लहजे में नरमी और हरकत में एक अलग सी शालीनता, न जेवरों की चमक चाहिए न मेकअप की सजावट, उसकी सादगी ही सबसे बड़ी रौनक, लगता जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से उसे तराशा हो, और हर अदा फूलों जैसी नजाकत भरी। खूबसूरती तो बहुतों में होती है, पर उसके चेहरे पर जो नूर और आंखों में जो सच्चाई है, वही उसे सबसे अलग बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ अब बातों को देते हैं थोड़ा सा ब्रेक, और सुनते हैं खूबसूरत गाना जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है होली चौक उत्तम नगर से। जी हाँ, जयराम खोरवाल साहब, सचिन, अमन, दीपांशु, इन्होंने भेजी है ये फरमाइश रफी साहब की आवाज में, ये खूबसूरत गीत। चलिए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

90 साल का सफर, 90 साल की शान, आकाशवाणी रहा सदा भारत की पहचान। जी हाँ, हर कोने तक पहुंचाया जिसने ज्ञान और प्यार, उस अमर आवाज को हमारा शत शत नमस्कार। ये मैसेज भेजा है राजेंद्र जटोलिया जी ने उषा चारू के साथ, दिल्ली नागलोई से लिख रहे हैं ये मैसेज, और बहुत बहुत शुक्रिया मैं कह रही हूं इन्हें इस मैसेज के लिए। और इसी के साथ अब दूसरे मैसेजेस का भी हम रुख कर लेते हैं जो लगातार आप भेज रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे अपनी तारीफ सुनने का और उसे पढ़ने का शौक है, लेकिन आप इतने प्यार से लिखकर भेजते हैं कि मेरा दिल नहीं मानता, और इतनी मेहनत आप करते हैं लिखने पर तो उसे पढ़ना तो बनता ही है ना। तो लिखते हैं कि नाज वो नाज है, हमें भी नाज है उसकी आवाज पर, जैसे कोई मीठा सा नगमा बजता हो साज पर। जब वो बोलते हैं तो थम जाती हैं धड़कनें, पल भर को खुदा की रहमत बरसती है उनकी इस आवाज पर। उनकी बातों में घुली है मिश्री और वफा का नूर, उदासी के बादलों को चुकर देती है पल में दूर। वो लफ्ज नहीं दिल को छूने वाला एक एहसास है, उनकी सादगी पर जमाने का हर दिल है मजबूर। सलामत रहे उनकी ये महफिल और ये हसीन अंदाज, जिस पर झुकता है अदब से आज सारा श्रोता समाज। हरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैसेज आया है बबलेश पवार जी की ओर से, डैनी पवार और मनीष पवार इनके साथ शामिल है, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आया है ये मैसेज। इनके साथ ही रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खुदा बख्श खलीफा साहब भी इनके साथ जुड़े हैं खलीफों की बावड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं, इसमें भी लिखी है बड़ी अच्छी बात कि शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो जमीर को जिंदा रखना। आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स जानते हैं, दो शख्स को पता है, पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नजर नहीं आते। बिल्कुल सही बात है जी। सतीश अनेजा बिमला अनेजा के साथ लिख रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से, और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश भी जिसे हम पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, आशा जी की आवाज में है, तो चलिए सुनते हैं और फिर जल्दी से वापस लौट कर भी आ जाते हैं।

0: छोटा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

वेलकम टू द शो वंस अगेन। दिल का मेल बॉक्स चल रहा है प्रोग्राम, जहां मैं यानी नाज हूं आपके साथ और पढ़ रही हूं आपके प्यार भरे मैसेजेस। जी हां, तो मेरे सामने खुला हुआ है इस वक्त राधा नामदेव, अमन आफरीदी, दानिश शेख, नवाज शेख, बेगम इमराना नाज जी का मैसेज, और इनके साथ शामिल हैं मास्टर खिल्लू परवेज जी भी। लिखते हैं कि खूबसूरत नजारा, खूबसूरत चेहरा हमेशा दिल को भाता है, लेकिन सच्चाई बयान तब हो जाती है जब खूबसूरत वादियां भी उन नजरों का बखान करने लगती हैं। मतलब कहना चाहते हैं कि माहौल भी जब आपका साथ देने लगे तब समझ जाइए कि कुछ अच्छा होने वाला है ना। और चलिए इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं और मैसेजेस का भी, और एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि एक सवाल भी पूछा है मैंने आज आपसे। आपको बताना है कि वो कौन सा गाना है, किस फिल्म से जुड़ा है वो गाना, ये भी आप बताएंगे, जिसमें किशोर दा ने मेल और फीमेल दोनों ही वॉइसेस में गाया है। बहुत ही मशहूर गाना है और बहुत ही चुलबुला गाना है। गीत के बोल आप लगातार लिखकर भेज रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूं कि वो सभी नाम मैं अंत में शामिल कर पाऊं जिन्होंने भेजा है आज के सवाल का सही जवाब। चलिए अगला मैसेज पढ़ लेते हैं इसी बात पर। हरजिंदर छींदा जी ने लिखा है, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता इनके साथ शामिल हैं और ये इनकी पोतियां हैं। गांव नथाना पंजाब से है ये मैसेज। बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं। बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं। संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। फैल रहा है खूब प्रदूषण, काट रहा मानव जंगल वन। हवा हो रही है जहरीली, कमजोर पड़ रहा है सबका तन। समय आ गया है कि सब मिलकर हम सब कोई कदम उठाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। बहुत ही अच्छी बात और बहुत जरूरी बात लिखकर भेजी है सर आपने। बहुत जरूरी है कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलें और अपने एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में सोचें, क्योंकि यही है जिससे हमारा जीवन है। चलिए और मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं। जितेंद्र कुमार राय जी ने मैसेज भेजा है फरीदाबाद से और अपनी फरमाइश भी लिखकर भेज दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है, ये गलत बात है। और चलिए एक और मैसेज शामिल करें। कार्यक्रम आपकी पसंद, जी हां, दिल का मेलबॉक्स है कार्यक्रम, और लिखते हैं कि आदरणीय प्यारी दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दिल के करीब होते हैं वो अक्सर समझ नहीं पाते कि वो कितने खास हैं, ये मेन बात लिखी है। वक्त कहता है कि ठहर जा, दिल कहता है कि चल पड़, और जिंदगी बस इसी खींचतान में बीत जाती है। जी जनाब, यही तो है जिंदगी, जिसे हमें काटना नहीं जीना है। ये मैसेज आया है हमारे पास लालगिरी गोस्वामी जी की ओर से, हेमलता, हिना और हर्षित और खुशी गोस्वामी इनके साथ शामिल है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आया है ये मैसेज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। और अगला मैसेज अब हम शामिल कर रहे हैं राजेंद्र नारंग जी का, और अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग के साथ इन्होंने लिखा है ये मैसेज, अपना फरमाइशी गीत लिखा है और मंडी डबवाली से लिखा है। आपका भी शुक्रिया। और बागपत यूपी से भी एक मैसेज आया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया जी की ओर से, इन्होंने भी अपनी फरमाइशी लिखकर भेजी है। देखिए मेरी नजरें जो ढूंढती है ना मैसेजेस, वो ढूंढती हैं कुछ शेरो शायरी, क्योंकि मैं तो देखिए मुरीद हूं, कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाए, बोलने को मिल जाए तो बस और क्या चाहिए, है ना। तो एक और मैसेज मुझे मिल गया है, लिखते हैं कि चाह कर भी अपने आप को मेल करने से हम रोक नहीं पाते, हमारे कानों में नाज की मीठी आवाज जो पड़ जाती है। खुदा जाने ये कयामत कहां से आई है, इतनी खूबसूरत आवाज खुदा ने बनाई है, माशाल्लाह, क्या बात है सर।
चौखुंटी बुलंदशहर से ये मैसेज आया है। सईद अब्बासी साहब ने लिखा है, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरा परिवार इस मैसेज में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज को लिखने के लिए। और देखिए एक और मैसेज आ चुका है, सत प्रकाश सनोठिया साहब ने लिखा है रोहिणी से, लिखते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा सौ बरस के पल की खबर नहीं। बहुत ही गहरी बात छुपी है इस शेर में। और अगला मैसेज भावरपुर बसना से है, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन के साथ ये मैसेज आया है भावरपुर बसना से और लिख रहे हैं कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस गीत की जिसके बोल आप लगातार मुझे लिखकर भेज रहे हैं और बिल्कुल सही लिखकर भेज रहे हैं जनाब। जी हाँ, फिल्म है हाफ टिकट और इसी मूवी में जो कि आई थी साल 1962 में, किशोर दा ने एक अलग ही कमाल कर दिखाया था। एक गीत के लिए उन्होंने मेल और फीमेल दोनों ही वॉइसेस में गाया और क्या गाया था। सलिल चौधरी का संगीत, किशोर

उर्दा और प्राण साहब की जबरदस्त परफॉर्मेंस यानी अदाकारी वाकई कमाल ही कर गई। और गीत के बोल जो आप लिखकर भेज रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया तेरी तिरछी नजरिया, ओ गॉड आई एम सो एक्साइटेड टू हियर दिस मस्ती भरा सॉन्ग। बट उससे पहले वो सभी नाम भी तो ले लूं जिन्होंने भेजा आज के सवाल का सही जवाब। तो भाई आफताब अंसारी साहब गंज डुंडवारा से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले आपने सही जवाब भेजा। उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, अनुबरजातिया मुंबई से, प्रकाश चंद्र जोगिया दिल्ली से, जॉन डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से आया बिल्कुल सही जवाब। नवाब अहमद भारती बल्ली मारान से, बोधराज खुरवाल उत्तमनगर दिल्ली से, धर्मेंद्र छीपा भोपालगढ़ राजस्थान से, सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी लखमीर सिंह महलखेड़ी कैथल हरियाणा से, गौरी शंकर वर्मा नागलोई से। और दोस्तों जैसा कि मैं देख रही हूं लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और वक्त की कमी के चलते मैं सभी नाम तो शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक मैसेज जो अभी अभी आया है उसे जरूर शामिल करूंगी। नजर को नजर की नजर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, तुम्हें देखना है इस नजर से जिस नजर से तुम्हें नजर ना लगे। उग्रसेन यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए। और एक और मैसेज शामिल कर लेते हैं, उससे पहले उसके बाद हम सुनेंगे वो गीत जिसका जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो यही साथी यही मीत, दर्द काटे गीत संगीत, कभी तो हमारी भी फरमाइश का गीत सुना दिया करें, मेहरबानी होगी और दुआओं में याद रखना हर पल। माफ कीजिए आज आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आगे जरूर कोशिश करेंगे। मैसेज आपने बहुत अच्छा लिखा है। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, राहुल खुराना, रचिता और केशु और रिधान भी इस मैसेज में शामिल हैं। तो चलिए जनाब वक्त बहुत कम है, किशोरदा को भी सुनना है और वो गाना भी इंजॉय करना है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। गाना सुनेंगे उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे फिर वापस आ जाएंगे, मतलब जाना तो कहीं नहीं है, वहीं टिककर रहना है कुर्सी पर और फिर सुनेंगे तस्वीर और मैं लेकर चलूंगी आपको एक खूबसूरत जगह, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टि कोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. Union ministers including Amit Shah, Dr. S. Jayashankar, Piyush Goyal, Nirmala Sitharaman and Shivraj Singh Chauhan, among others, have wished Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-continuous-serving elected Prime Minister of India. In a social media post, Home Minister Amit Shah said that these 12 years of Prime Minister Modi have been about restoring India's pride, cultural renaissance and freeing the nation from the mentality of servitude. Dr. Jayashankar noted that this achievement reflects the enduring trust and confidence that the people of India placed in PM Modi's leadership, vision and commitment to national development. Ms. Sitharaman added that during this period, the NDA government under Prime Minister Modi has delivered bold reforms and has implemented several initiatives with unprecedented pace and scale. She emphasized that Prime Minister Modi provided decisive and strong leadership through a series of challenging times that the nation has faced. A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Our correspondent has more details.
3: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Mondal, Akashvani News, Delhi.
2: The centre has unveiled 1.25 lakh crore rupees push for rural development in the country. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan said that the central government has already allocated 30,000 crore rupees under MG Narega. He said in addition to this, an interim allocation of 95,692 crore rupees has been released to states and union territories. With this, the total allocation will exceed 1.25 lakh crore rupees. Mr. Chauhan said this after chairing a virtual meeting of state rural development ministers regarding the implementation of Viksit Bharat Jiramji. The act will come into force across the country with effect from 1st of next month. The U.S. military has launched strikes against Iran in response to the downing of a U.S. Army Apache helicopter off Oman coast. U.S. officials said the helicopter was brought down by an Iranian drone and two pilots were rescued. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi warned that Tehran would leave no attack or threat unanswered, saying the U.S. had tested Iran's resolve. Meanwhile, on the Lebanese front, Israel carried out strikes on the southern Lebanese port city of Tyre on Tuesday after issuing an evacuation order covering the entire city for the first time. According to Lebanon's health ministry, at least 8 people were killed in the attack. The latest fighting has further strained the U.S.-brokered ceasefire between Israel and Iran, which remains formally in place despite repeated violations. In men's cricket, India A defeated Sri Lanka A by 8 runs in a close contest in the opening clash of Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka yesterday. Opting to bat first, India scored 277 for 6 in stipulated 50 overs, riding on Ruthuraj Gaikwad's 101 runs. Skipper Tilak Verma also scored 60 runs. In reply, Sri Lanka fell short of just 8 runs as they got bundled.

प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूँ पूरी तरह से तैयार, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए। आज मैं करवाने वाली हूँ आपको राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में मौजूद एकमात्र हिल स्टेशन की सैर। अरावली रेंज में मौजूद रेगिस्तान की गर्मी में सर्दी का एहसास कराने वाली ये जगह, जो कि बेहद खूबसूरत है और करने के लिए जहां बहुत कुछ है, बस वहीं की सैर करेंगे आज आप मेरे यानी नाज के साथ। जगह का नाम क्या है वो मैं नहीं बल्कि आप ही मुझे बताएंगे। कहाँ और कैसे ये भी आप जानते हैं। fmgoldair@gmail.com पर जल्दी से कर दीजिए ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 9868868753 पर, वो भी इस सॉन्ग के शुरू होकर खत्म होने से पहले।

जी हाँ बिल्कुल, केसरिया बालम, जहां की है शान ये गाना, वहीं पहुंच चुके हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। राजस्थान, और जगह का नाम क्या है? ये बिल्कुल सही सही लिखकर भेज दिया है विजय नारंग साहब ने दिल्ली से, सपना बोकोलिया जी ने नागलोई दिल्ली से ही, अनुपर जातिया जी ने मुंबई से, उग्रसेन यादव जी ने भी दिल्ली से, एसके खन्ना साहब ने विकासपुरी से, और सुदर्शन मुखी जी ने शांति नगर सोनीपत से। जी हाँ बिल्कुल सही हैं आप। माउंट आबू जा रहे हैं आज आप मेरे साथ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और कैसे पहुंचना है माउंट आबू तक, चलिए अब ये बता देती हूँ। तो भाई नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको पड़ने वाला है आबू रोड, ठीक है, यहाँ की निचली पहाड़ियों पर ही मौजूद है। कनेक्टिविटी जिसकी दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर अहमदाबाद, हर जगह से बहुत ही बढ़िया है। और रेलवे स्टेशन से मेन हिल स्टेशन तक के लिए आपको यहां आराम से बसें या फिर टैक्सीज आराम से मिल जाती हैं। बाय रोड अगर आपको सफर करना पसंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अहमदाबाद से रेगुलर बसेस आपको मिल जाएंगी माउंट आबू तक के लिए। अपनी गाड़ी से अगर जाने का विचार बने तो पकड़ लीजिए नेशनल हाईवे 14 का साथ और पहुंच जाइए खूबसूरत नजारों का लुत्फ लेते हुए सीधा, एकदम सीधा माउंट आबू। बाय एयर लैंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है उदयपुर एयरपोर्ट जो माउंट आबू से लगभग 185 किलोमीटर दूर है, और दूसरा ऑप्शन आप अहमदाबाद भी चुन सकते हैं, जहां के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आपको करीब 221 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना, फिर जब वापस आएंगे तो मुझे आपको है बताना कि किस मौसम में आपको चाहिए माउंट आबू का प्लान बनाना।

राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में माउंट आबू एक ताजी हवा की तरह है। अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंची जगह, लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा माउंट आबू कई वजहों से आपको अपनी ओर खींचता है। खूबसूरत नदियों, झीलों, झरनों, सदाबहार वनों से लबरेज माउंट आबू ओएसिस इन द डेजर्ट यानी मरुस्थल का नखलिस्तान भी कहा जाता है। अच्छा, नखलिस्तान इस शब्द के मायने क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। नखल यानी खजूर का पेड़ और स्थान माने जगह, यानी एक ऐसी जगह जो भले ही रेगिस्तान में हो लेकिन वहां खजूर के पेड़ और हरियाली भरपूर है। तो ऐसी ही करिश्माई और खूबसूरत जगह लेकर आ गई हूं मैं आपको, जिसका नाम है माउंट आबू। बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा यहां आने के लिए? तो जनाब, इसका जवाब है सर्दियां, यानी नवंबर से फरवरी के बीच, जब मौसम होता है यहां सुहाना और टेम्परेचर रहता है 15 से 25 डिग्री के बीच। रातें हालांकि काफी ठंडी होती हैं यहां, जब टेम्परेचर कई बार 0 डिग्री तक भी गिर जाता है। दिसंबर के एंड में यहां का विंटर फेस्टिवल आप एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप आते हैं मार्च से जून के बीच, तब बाकी राजस्थान के मुकाबले तो आपको यहां कुछ राहत जरूर महसूस होगी, क्योंकि इस दौरान यहां का तापमान आप महसूस करेंगे 25 से 34 डिग्री के बीच, और साथ ही आप हिस्सा बन सकते हैं समर फेस्टिवल का भी। मॉनसून यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच अगर आप माउंट आबू आते हैं तो आपको मिलेगी रुक रुक कर बारिश। और हो सकता है कि आप बोटिंग और ट्रैकिंग मिस कर जाएं, क्योंकि बारिश के दिनों में अमूमन ये दोनों एक्टिविटीज बंद कर दी जाती हैं। हालांकि अरावली की पहाड़ियों पर हरियाली और धुंध आपको जरूर मिलेगी, जो कि राजस्थान की रेतीली जमीन पर किसी जादू से कम नहीं।

0: पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

तस्वीर सुन रहे हैं आप, जहां मैं यानी नाज आपको लेकर आ गई हूं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू की सैर पर। राजस्थान के सिरोही जिले का हिस्सा है माउंट आबू, जो अतीत में माउंट अबू यानी अरबुदांचल का हिस्सा हुआ करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पर्वत हमेशा से घने जंगलों से घिरा रहा और यहां ऋषि वशिष्ठ निवास किया करते थे और पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने यहीं माउंट आबू की चोटी पर यज्ञ किया था। एक कथा ये भी कहती है कि अर्बुदा नाम के एक सर्प ने भगवान नंदी का जीवन यहां पर बचाया था और इसीलिए इस पर्वत का नाम अर्बुदारण्य पड़ गया, जो बाद में अबू कहा जाने लगा। राजस्थान और गुजरात की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए ये जगह हमेशा से सबकी पसंद रही, फिर चाहे वो महाराजाओं का शासनकाल रहा हो या फिर अभी का समय। छुट्टियां बिताने के लिए माउंट आबू एक परफेक्ट डेस्टिनेशन था, है और हमेशा रहेगा। यहां पर बने बड़े बड़े घर, ब्रिटिश स्टाइल में बने बंगले, हॉलिडे लॉज आपको एक अलग ही रॉयल एक्सपीरियंस देते हैं। साथ ही जंगलों की तरफ आप जब जाते हैं तो आदिवासी जातियों के डेरे भी आप देख पाएंगे माउंट आबू में। और क्या कुछ है यहाँ देखने और घूमने लायक जानेंगे इस अगले ट्रैक को सुनने और एंजॉय करने के बाद।

और देखिए मेघा तो सुबह से ही आज छाए हुए हैं यहाँ दिल्ली में। आपके यहाँ क्या हाल है जरा बताइए लिखकर। लेकिन बरस नहीं रहे हैं ये मेघा। कोई बात नहीं, बरस ही जाएंगे। मॉनसून अब बहुत ज्यादा दूर तो नहीं, गर्मी से राहत भी मिल ही जाएगी। और फिलहाल लौटते हैं माउंट आबू, जहां अगर आप पहुंच गए हैं तो यहाँ की नक्की लेक तो घूमना बनता ही है। और क्यों आपको यहाँ जरूर आना चाहिए, अब ये सुन लीजिए। माउंट आबू के बीचों बीच मौजूद भारत की पहली मानव निर्मित झील है ये, जो लगभग 80 फुट गहरी है और माउंट आबू का दिल इसे कहा जाता है। नक्की, ये शब्द जो है वो हिंदी के नख यानी नाखून से निकला है। दरअसल मान्यता इस झील को लेकर ये है कि प्राचीन काल में देवताओं ने राक्षस बशकली से अपनी रक्षा करने के लिए और प्रवास करने के लिए इस पूरी झील को अपने नाखूनों से खोद कर तैयार किया था। गरासिया जनजाति के लिए ये झील बहुत ही पवित्र है। और जानकारी ये भी मिलती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों का एक हिस्सा भी इस झील में विसर्जित किया गया था। उनकी याद में झील के किनारे गांधी वाटिका का निर्माण किया गया है। आप यहां आएंगे तो बोटिंग का भरपूर आनंद लेंगे। पैडल बोट, रो बोट या फिर कश्मीरी स्टाइल शिकारा बोट,

वो भी यहाँ मिलेगी आपको। इसके अलावा झील के ठीक ऊपर एक बड़ी सी नेचुरल चट्टान है जिसका आकार हूबहू एक टोड यानी मेंढक के जैसा दिखता है और इसीलिए तो इसे टोड रॉक कहा जाता है, जहां आप ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। झील के किनारे की तरफ अगर आप जाएंगे तो मॉल रोड आपको मिलेगी, जहां आप जी भर के कर सकते हैं शॉपिंग। राजस्थानी हस्तशिल्प, बांधनी के कपड़े, लेदर आइटम्स और कोटा डोरिया की साड़ियां आप यहां से खरीद सकते हैं और अपने इस सफर को यादगार बना सकते हैं हमेशा के लिए।

0: भर्खरै श्रोताहरूले सुन्नुभयो, टीकामाया मगरले डाक्टर निर्चुङ भुटियासँग वर्षा ऋतु अनि स्वास्थ्य विषयमा लिनुभएको अन्तर्वार्ता। हामी आकाशवाणी गान्तोकको मध्याहको प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
6: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 सम्म बीएलओहरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
5: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
6: 1 जुलाई 2026 सम्म 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
5: फारम ईसीआईएनईटी एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
6: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
0: यो आकाशवाणी गान्तोक हो। यसका साथै यहाँहरूले हामीलाई 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजंगा साथै न्यूज अन एआईआर मोबाइल एपमा पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, अब केही क्षण मनोरञ्जन गरौं। महिला कलाकारहरूको स्वरमा सजिएका विभिन्न गीतहरू सुनेर श्रोताहरूलाई कार्यक्रमको पहिलो गीत सुनाउन गइरहेका छौं। कलाकार अल्का याग्निकको स्वरमा श्रोता मनोरञ्जन लिनुहोस् यस गीतबाट।

विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह कक्षा आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा। बच्चों, आसान से परिभाषा में अनुच्छेद लेखन को यह कहेंगे, किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में पूरा और सार्थक होता है। इसमें जो भी हम अपने विचार रखते हैं वह संक्षेप में रखते हैं। हमेशा हमारे मन में यह दुविधा होती है कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है, यह निबंध लेखन से किस प्रकार भिन्न होता है। कई बच्चे निबंध और अनुच्छेद को एक मान लेते हैं, जबकि अनुच्छेद और निबंध में काफी विभिन्नताएं होती है। निबंध लेखन में हम एक विषय को बहुत ही विस्तार पूर्वक और काफी शब्दों में उसका वर्णन करते हैं, जबकि अनुच्छेद काफी संक्षिप्त एवं सटीक होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अनुच्छेद लिखते समय किन किन विशेष बातों का ख्याल रखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में बहुत सी बातें आवश्यक होती हैं। सबसे पहली और आवश्यक बात कि जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं उसके बारे में हम बिल्कुल सटीक और साफ साफ शब्दों में लिखें। ये नहीं बच्चों कि हमें विषय मिला है जल प्रदूषण और हमने अपनी अनुच्छेद वायु प्रदूषण पर लिख दिया। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने विषय से बिल्कुल नहीं भटकना है, नहीं तो परीक्षा में आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इसी को हम विषयानुकूलता भी कहते हैं, मतलब जो विषय हमें दिया गया है हमें अपने विचार उसी पर लिखना होता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। सबसे ज्यादा महत्व भाषा का होता है और सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। जब तक आपकी भाषा पाठक पर प्रभाव नहीं डालेगी तब तक वह लेख अच्छा और महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। लेखनी में शुद्ध भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए लिखते समय यह विशेष ध्यान दें कि अनुच्छेद में जो भाषा आपने प्रयोग किया है वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली एवं शुद्ध होना चाहिए। ध्यान रखें आपकी भाषा में कोई त्रुटि ना हो और विषय के अनुसार हो। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। वर्तनी में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस पर भी आपके अंक कट जाएंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, संक्षिप्तता। इसका मतलब है कि हमारा अनुच्छेद संक्षिप्त तथा कम शब्दों में पूर्ण हो जाना चाहिए। जिस प्रकार हमें निबंध में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, किसी एक विषय का विस्तार में वर्णन करना होता है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद संक्षेप में लिखा जाता है। हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को 80 से 100 शब्दों में समाप्त करना होता है। हमें संक्षेप में ही अपने विचारों को प्रकट करना होता है, मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बातों को लिखना। अनुच्छेद में ज्यादातर शब्द सीमा 100 से 120 रखी जाती है। और हाँ बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर शब्द सीमा नहीं दिया गया हो और प्रश्न 5 अंकों का है तो आप 80 से 100 शब्दों में अपना अनुच्छेद खत्म कर सकते हैं। हमें अपने विचारों को हमेशा सही क्रम में रखना चाहिए, मतलब हमारा अनुच्छेद हमेशा क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी कि आप जो वाक्य लिख रहे हैं वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से आपस में जुड़े होने चाहिए। मैं फिर से एक दूसरे तरह से इसकी परिभाषा बताती हूँ। जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद निबंध से छोटा होता है, इसमें निबंध की तरह भूमिका अंग तथा निष्कर्ष नहीं लिखा जाता है। लेकिन हाँ बच्चों, यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में विषय से संबंधित कोई सूक्ति उदाहरण या किसी कविता के 2 पंक्तियां लिख दे तो अनुच्छेद और प्रभावशाली तथा भावनात्मक हो जाता है। इससे पाठक पर एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। जब भी कोई पाठक आपका अनुच्छेद पढ़े वह उस भावना से जुड़ जाए और अंत तक आपका अनुच्छेद पढ़ेगा। तो बच्चों, अब तक आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और यह निबंध लेखन से किस प्रकार भिन्न है। चलिए मैं अब आप लोगों को कुछ विषय पर उदाहरण सहित अनुच्छेद पढ़कर सुनाती हूँ, जिससे आपके मन में कोई भी आशंका होगी वह साफ हो जाएगी। मेरा पहला विषय है अभ्यास का महत्व। इस पे मैं आपको अनुच्छेद पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। जिस प्रकार अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की, उसी प्रकार एक मंद बुद्धि वालक

वरदराज ने निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की निरंतर रगड़ से कठोर पत्थर पर निशान पर जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से इस विषय में कुशलता प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको समझ में आया? इस अनुच्छेद को मैं एक बार और पढ़ रही हूँ और बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अभ्यास का महत्व। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। जिस प्रकार अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की, उसी प्रकार एक मंद बुद्धि वालक वरदराज ने निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की निरंतर रगड़ से कठोर पत्थर पर निशान पर जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से इस विषय में कुशलता प्राप्त करेंगे। तो आप लोगों को मैंने एक उदाहरण दिया, अब मैं दूसरा विषय लेने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मीठी बोली का महत्व। वाणी ही मनुष्य को प्रिय व अप्रिय बनाती है। यदि मनुष्य मीठी वाणी बोले तो वह सबका प्यारा बन जाता है और उसमें अनेक गुण होते हुए भी यदि उसकी बोली मीठी नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। इस तथ्य को कोयल और कौवे के उदाहरण द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। दोनों दिखने में समान होते हैं, परंतु कोयल की मीठी आवाज तथा कौवे की कर्कश आवाज दोनों को अलग अलग पहचान देती है। इसलिए कौवा सबको अप्रिय तथा कोयल सबको प्रिय लगती है। कौवे की कर्कश आवाज और कोयल की मधुर वाणी सुन सभी जान जाते हैं दोनों के गुण। मनुष्य अपनी मधुर वाणी से शत्रु को भी अपना दोस्त बना सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत आदर पाता है। विद्वानों और कवियों ने भी मधुर वचन को औषधि के समान कहा है। मधुर बोली सुनने वाले व बोलने वाले दोनों के मन को शांति मिलती है। इससे समाज में प्रेम व भाईचारे का वातावरण बनता है। अतः सभी को मीठी बोली बोलनी चाहिए तथा अहंकार व क्रोध त्याग करना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने दो उदाहरण से अनुच्छेद लेखन को समझा, अब मैं आप लोगों को एक और उदाहरण पढ़ने जा रही हूँ। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है और अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा ठीक समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर कभी नहीं आता। अगर एक बार हमने समय को व्यर्थ गवा दिया तो हमें पछताने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया है उसे वर्तमान में ना सोचकर आगे अपने कार्य पर निरंतर प्रयास एवं मेहनत करने की सोचनी चाहिए। इसी में हमारी भलाई तथा बुद्धिमानी है। तो बच्चों, अभी तक तीन उदाहरण के साथ आप लोगों ने अनुच्छेद लेखन के बारे में समझा कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, शब्दों में कसावट होनी चाहिए, हमारे शब्द प्रभावशाली होने चाहिए और हमारे भाषा शुद्ध होनी चाहिए। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि अनुच्छेद क्या होता है। किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में पूरा और सार्थक

0: तक होता है। इसमें जो भी हम अपने विचार रखते हैं वह संक्षेप में रखते हैं। निबंध लेखन में हम एक विषय को बहुत ही विस्तार पूर्वक और काफी शब्दों में उसका वर्णन करते हैं, जबकि अनुच्छेद काफी संक्षिप्त एवं सटीक होता है। जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं उसके बारे में हम बिल्कुल सटीक और साफ साफ शब्दों में लिखें। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने विषय से बिल्कुल नहीं भटकना है। जो विषय हमें दिया गया है हमें अपने विचार उसी पर लिखना होता है। लेखनी में शुद्ध भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए लिखते समय यह विशेष ध्यान दें कि अनुच्छेद में जो भाषा आपने प्रयोग किया है वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली एवं शुद्ध होना चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। वर्तनी में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद संक्षिप्त तथा कम शब्दों में पूर्ण हो जाना चाहिए। हमें निबंध में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, किसी एक विषय का विस्तार में वर्णन करना होता है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद संक्षेप में लिखा जाता है। हमें संक्षेप में ही अपने विचारों को प्रकट करना होता है, मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बातों को लिखना। हमें अपने विचारों को हमेशा सही क्रम में रखना चाहिए, यानी कि आप जो वाक्य लिख रहे हैं वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से आपस में जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद निबंध से छोटा होता है, इसमें निबंध की तरह भूमिका अंग तथा निष्कर्ष नहीं लिखा जाता है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में विषय से संबंधित कोई सूक्ति उदाहरण या किसी कविता के दो पंक्तियां लिख दे तो अनुच्छेद और प्रभावशाली तथा भावनात्मक हो जाता है। तो बच्चों, अब तक आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और यह निबंध लेखन से किस प्रकार भिन्न है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी उदाहरण के साथ एक और शीर्षक पे अनुच्छेद लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा शीर्षक है कंप्यूटर एक जादुई पिटारा। आज का युग विज्ञान का युग है। वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें कंप्यूटर के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जो काम मनुष्य द्वारा पहले बड़ी कठिनाई के साथ किया जाता था, आज वही काम कंप्यूटर के माध्यम से बड़ी ही आसानी से चंद मिनटों में कर लिया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इंटरनेट द्वारा गूगल, याहू एवं बिंग आदि वेबसाइट पर दुनिया भर की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट पर ईमेल, वीडियो कॉल आदि के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए बस हमें इंटरनेट तथा अकाउंट होने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। इस पर घर बैठे अनेक खेल खेले जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो कंप्यूटर मानव जीवन को बहुत सरल तथा आसान बना दिया है। अत्याधुनिक तथा मुश्किल से मुश्किल कार्य कंप्यूटर के माध्यम से मिनटों में कर लिए जाते हैं। इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कंप्यूटर सच में एक जादुई पिटारा है। तो बच्चों, देखा आपने मैंने कैसे कम से कम तथा प्रभावशाली शब्दों एवं उदाहरण के साथ अपने अनुच्छेद को पूरा किया है। उसी तरह आप भी किसी भी दिए गए विषय पर ये सारी बातों का ध्यान रखकर अनुच्छेद लिख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कक्षा आपके लिए फायदेमंद रही होगी और अनुच्छेद लेखन के विषय में जो भी भ्रम रही होंगी वह समाप्त हो चुकी होंगी तथा साफ हो चुकी होंगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और अगले कक्षा में मिलने की उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताहरूले भर्खरै सुन्नुभयो सुस्मिता सिंहद्वारा हिन्दी भाषा पाठमा अनुच्छेद लेखन। हामी आकाशवाणी गान्तोकको मध्याहको प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै यहाँले हामीलाई 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजंघा साथै न्यूज अन एआईआर मोबाइल एपमा पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, अब केही क्षण मनोरञ्जन गरौं कलाकार एआर रहमान अनि सुखवेन्दर सिंहको स्वरमा सजिएको गीत सुनेर।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेर

0: बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
1: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
1: जी।
0: तो आज
1: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
0: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
1: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
0: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
1: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
1: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
1: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
1: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: फिर क्या होता है,
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।

0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे,
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
2: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
2: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
3: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडु नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
3: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिरामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके जमाने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं जिंदगी के नए सफर में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा जरूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूं और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो, जब आप रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफर की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार जरूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कने ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहां आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

और फिर जब इबारत में जुम्मे की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गीत, फिल्म हमसे आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है। जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्म पत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है। बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था जो आज तक धर्म पत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है। उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोक झोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं न कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाए आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से

0: अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केन्द्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उसमें क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलैम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में

0: अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमरीका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इसराइली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतको सबैभन्दा लामो समयसम्म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गरेकोमा बधाई दिएका छन्। श्रीलंका राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशा नायकेले एक पत्रमा भन्नुभएको छ, यो उपलब्धि विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका जनताले वहाँको नेतृत्वमा बारम्बार देखाएको विश्वासको प्रमाण पनि हो। पपुआ न्यू गिनीका प्रधानमन्त्री जेम्स मारेपेले एक भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई आदर्श नेतृत्वको उदाहरण बताउनुभयो। त्रिनिदाद र टोब्यागोका प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विश्वेश्वरले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारत विश्वव्यापी मामिलामा प्रखर आवाजको रूपमा उभिएको बताउनु भएको छ। भारतमा अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोरले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गरेकोमा बधाई दिनुभएको छ। सोशियल मीडिया पोस्टमा श्री गोरले भन्नुभयो, यो उपलब्धि प्रधानमन्त्री मोदीको दशकौंको समर्पित जनसेवा र नेतृत्वको सशक्त प्रमाण हो। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि श्रोताहरूले सोशियल मीडिया ह्याण्डल एक्स एट एआईआर न्यूज कर्सियङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
1: आजकल भारत के गांव गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
0: यो आकाशवाणी हो। केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले आज प्रस्ताव पारित गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सबैभन्दा लामो कार्यकालका लागि बधाई दिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकपछि नयाँ दिल्लीमा संचारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै सूचना एवं प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवले भन्नुभयो, प्रस्तावमा श्री मोदीद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रको सेवालाई निरन्तरता दिने यस ऐतिहासिक उपलब्धिको चर्चा गरिएको छ। श्री वैष्णवले भन्नुभयो, मन्त्रीमण्डलले आज 2,169 करोड़ रूपियाँको लागतमा अहमदाबाद मेट्रोको चरण 2A को विस्तारलाई अनुमोदन गरेको छ। यसमा 5 स्टेशन सहित 6 किलोमिटर लामो मेट्रो करिडोर पनि सामेल छ। यसका साथै मन्त्री मण्डलले आन्ध्र प्रदेशको अमरावतीमा केन्द्र सरकार कार्यालय परिसर र केन्द्र सरकारको आवासीय परिसरलाई पनि अनुमोदन गरेको छ।
3: अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: भारतको सबैभन्दा लामो समयसम्म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको 12 वर्ष पूरा भएको र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालको उत्सव मनाउन राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन एनडीएको आज नयाँ दिल्लीमा बैठक हुन गइरहेको छ। अमेरिका र इरान बीच तनाव फेरि बढ़ेको छ। दुवै देशका सेनाबीच रातभरि सैन्य आक्रमण भएपछि तनाव बढ़ेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा होर्मुज जलडमरू मध्य नजिकै अपाचे हेलिकप्टर खसालेपछि इरान विरूद्ध आत्मरक्षाको आक्रमण गरेको अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले पुष्टि गरेको छ। सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट।
4: अमरीका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलैम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवसर पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी है।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। कई विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें

0: सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में एक अमरीकी अड्डे और खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया। इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजराक की और दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद यह बड़ी झड़प है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत ने वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में हैं। अफगानिस्तान के कुनार खोस और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दमन के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के हिंसक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet today passes a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions. Mr. Vaishnaw said the Cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometre long metro corridor with 5 stations. The minister said upon operationalisation of Phase 2A, the Ahmedabad-Gandhinagar will have over 77 kilometres of active metro rail network. He said the cabinet also approved Central Government Office Complex and Central Government Residential Complex in Amravati in Andhra Pradesh. President Draupadi Murmu has congratulated Prime Minister Narendra Modi on serving as the longest continuously elected Prime Minister of the country. In a social media post, the President said that this landmark occasion stands as a testament to the enduring trust and confidence reposed in his leadership by the people of the country. She highlighted that his tenure has been distinguished by far-reaching advancements across governance, economic resilience and social transformation. She said of the many initiatives undertaken under his leadership, PM Janman and Dharti Aava Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan hold a special place in her heart. The President said, Mr. Modi's inspiring journey continues to instill hope and renewed confidence in India's strong democratic traditions. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that there is no shortage of compressed natural gas in the country. He said the government is expanding the supply of piped natural gas to households and efforts are being made to convert LPG connections to PNG connections.
2: Global situation ka fayda utha ke
3: taking advantage of the current global situation, some individuals have attempted to create artificial shortages. However, I would like to clarify, there is no shortage of CNG or piped natural gas. In fact, efforts are underway to reduce dependence on LPG by promoting the wider use of PNG.
2: Convert karna hai into PNG connection.
1: Trinamool Congress MP Sushmita Dev has resigned as a member of the Rajya Sabha. She has sent the resignation letter to Rajya Sabha Chairman CP Radhakrishnan. After her resignation, she met Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma in New Delhi. Earlier, veteran Trinamool leader and Rajya Sabha member Sukhendu Shekhar Ray had resigned from both Rajya Sabha and the party. The government has refuted several social media posts falsely claiming that the RBI will withdraw paper currency notes and replace them with plastic currency notes from the 30th of this month. Fact-check unit of the Press Information Bureau has termed the claim as fake. PIB clarified that according to the RBI, there are no plans to withdraw paper currency notes or replace them with plastic currency notes by the end of this month. At least 13 people, mostly children, were killed in a Pakistani military airstrikes in Afghanistan's Kunar, Khosht and Paktika provinces. In a statement, Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid condemned the attack and said that the attack targeting civilian homes took place yesterday night. He said the Pakistani military once again violated Afghanistan's airspace and called it a humanitarian crime and act of aggression. The latest incident comes amid escalating tensions between Pakistan and Afghanistan over the past few months, with repeated exchanges of fire and growing concerns over civilian casualties. The IMD has said that Delhi NCR is expected to experience significant weather changes over the next 3 days, with thunderstorms, dust storms and rainfall likely to bring much-needed relief from the scorching temperatures. India have suffered yet another blow to their ODI squad ahead of the three-match ODI series against Afghanistan. After Virat Kohli, Hardik Pandya has been ruled out of the series, which is set to begin India's preparations for the 2027 ODI World Cup to be held in South Africa. And that is the end of this news bulletin.

3:10 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह वक्त होता है मन भावन का, जब आप भेजते हैं अपने संदेश, अपने ईमेल्स और साथ में भेजते हैं अपनी फरमाइशें। तो जहां पर आपको अपनी फरमाइशें भेजनी है उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी कि 9868868753, और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com। और मनभावन लेकर आपके साथ मैं हूं रजनी। और फिलहाल कौन है हमारे साथ, हमारे श्रोता जिन्होंने सबसे पहले अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, ये है कविता और दिग्दर्शन मेरठ से, और ये सुनना चाहते हैं एक गीत फिल्म जंजीर से। तो आइए कविता और दिग्दर्शन की फरमाइश पर ये गीत से शुरुआत करते हैं मनभावन की। आवाज है मन्ना डे की।

0: नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद भारती और सूफिया नवाब ने हमें संदेश भेजा है बल्ली मारान से। इनके अलावा हमें सुन रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। साथ ही हमें संदेश भेजा है कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा ने। अगला संदेश भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से इनका संदेश मिला और अगला पैगाम सनावत से मिला है शेख मूसा मोहसिन का। और इनके अलावा मनकारा मंदिर बीटीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोगों ने एक साथ संदेश भेजा है। बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह ने ये पैगाम भेजा। और अगला संदेश गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से मिला है लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्नी लोखंडे और रक्षिता लोखंडे का। और ये सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी का गीत, आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की।
1: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है,

चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा ने हमें संदेश भेजा। इनके अलावा स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें पैगाम मिला हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया का। अगला जो ईमेल है वो हमें भेजा है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती कंचन, कुसुम, प्राची और प्रवीण पुजारी हमें सुन रहे हैं। इनके बाद जो पैगाम मिला है हमें ये है मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल का। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तैमूर, शामिर खान और अजलान। और इनके बाद हमें संदेश मिला है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। और ये सुनना चाहते हैं सुहाग फिल्म का एक गीत, तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।

संबलपुर कांकेर से हमें सुन रहे हैं फागू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। इनके बाद हमें संदेश मिला है खंडवा रोड सनावत से शहबाज अरबाज, फरहाज फरदीन, समीर और डॉक्टर मोइन शेख का। और संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया हमें सुन रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश भेजने वाले हैं राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी, पुष्पेंद्र कुमार दूदी, गांव फ्रांसी हिसार से। और गांव नथाना पंजाब से हमें सुन रहे हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। इनके अलावा हमें संदेश मिला है डीके टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का। सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने हमें संदेश भेजा। अगला पैगाम हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा का, और ये सुनना चाहते हैं ममता फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।

घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मनभावन का आधा सफर लगभग हम पूरा कर चुके हैं। इस ब्रेक के बाद जारी है मनभावन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जहां पर आप भेजते हैं अपनी फरमाइशें, अपने संदेशों और अपने ईमेल्स के जरिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप संदेश कर सकते हैं, ये है 9868868753 और हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com। अगला संदेश हम तक पहुंचा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा सुन रहे हैं हमको। इनके अलावा हमें संदेश मिला है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। अगला संदेश हम तक पहुंचा है महिंद्रा वर्क कैलाश का, कहां से भेज रहे हैं ये संदेश ये हमें नहीं समझ में आया है। इनके अलावा हमें संदेश मिला है जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन का सुंदर नगर भिलाईगढ़ से। साथ ही हमें संदेश मिला है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का। और साथ ही संदेश हमें भेज रहे हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, रामगंज खंडवा उत्तर मध्य प्रदेश से। और शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से श्रीमती कमला देवी महोबिया ने हमें संदेश भेजा। और शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई खोबरखेड़े, छकुली ताई खोबरखेड़े और खंडवी बुलढाणा से दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े और थिलोरी अमरावती से सुनेना पवन भोंडे ने हमें संदेश भेजा। और राजकोट

गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार ने संदेश भेजा है और ये तीनों सुनना चाहते हैं भूत बंगला फिल्म का गीत। ये गीत बहुत ही सुंदर है लता मंगेशकर की आवाज में, लेकिन सुनाई कम देता है, कम सुनने में आता है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए यही गीत आप तक पहुंचाते हैं फिल्म भूत बंगला से।

आपके जो संदेशों का सिलसिला है वो लगातार जारी है और हम कोशिश तो यही करते हैं कि आपके सभी संदेश हम पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा फरमाइशें आपकी पूरी कर पाएं। फिलहाल जो संदेश मुझे दिख रहा है ये है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से संदेश भेज रहे हैं। इनके बाद नूर आयशा अहमद बागवान इकबाल अहमद बागवान अखलाक अहमद बागवान आमना सामना राबिया परी आशु जूही सदफ आरजू बागवान और समस्त बागवान परिवार बागवान मंजिल छोटी बलिया से हमें संदेश भेज रहे हैं। और मोहम्मद इसाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से और छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान इशरत परवीन मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा ने संदेश भेजा है। ऊपरकोट मोहल्ला चुखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निकहत परवीन अब्बासी शहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अजान अब्बासी अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। इनके बाद हमें संदेश भेजा है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल दिलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह और अविराज सिंह ने और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला और कुमकुन सुरलकर हमें सुन रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं बॉबी फिल्म का गीत। तो आइए आपकी

0: फरमाइश पर ये गीत आप तक पहुंच रहा है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

भंवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा और जगदीश देवांगन हमें सुन रहे हैं। इनके बाद हमें संदेश भेजा है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़ ने, साथ में कमल साहनी भी हैं, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से जगदीश प्रसाद, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश ने हमें संदेश भेजा है। और इनके अलावा जो संदेश हमारे पास आया है ये है शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान गंज डुंडवारा से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल और माल टेकड़ी अमरावती से प्रशांत ठेकरे, वर्षा ठेकरे और श्रद्धा ठेकरे ने हमें संदेश भेजा है। इनके अलावा जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का पैगाम मिला। और भिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रंजीत देवांगन, धर्मेंद्र देवांगन और राजेंद्र देवांगन ने संदेश भेजा। इनके बाद जो संदेश हमें मिला है ये हमें भेजा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और मलकापुर से नारायण इंग्लिश, सोपान तायड़े और आशीष मोहकर ने। और ये सभी सुनना चाहते हैं जंगली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। तो लीजिए, आपकी पसंद पर पहुंच रहा है ये गीत फिल्म जंगली से।

जय हिंद फौजी दोस्तों, स्वर्गाथा में आज आप सभी के साथ मैं हूं आप सबों का दोस्त दयानंद। दोस्तों आज एक लोकप्रिय भारतीय पॉप गायक, रैपर और संगीतकार मीका सिंह का, जिनका असली नाम अमरीक सिंह है, उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हिंदी फिल्म संगीत सुनने के साथ साथ आज चर्चा करेंगे मीका सिंह के जीवन करियर के बारे में। इससे पहले कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं। राजशेखर की गीत रचना, कृष्ण के संगीत निर्देशन में फिल्म तनु वेड्स मनु का वो गाना जो साथियों के साथ मीका सिंह ने गाया और उन्हें फैंस का बेशुमार प्यार मिला।

फौजी दोस्तों अमरीक सिंह उर्फ मिका सिंह का जन्म आज के दिन यानी 10 जून सन 1977 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में हुआ था। उनके पिता अजमेर सिंह चंदन और मां बबीर कौर दोनों ही प्रशिक्षित संगीतकार थे। मिका सिंह पंजाबी और हिंदी गायक दलेर सिंह मेहंदी के छोटे भाई हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुने फिल्म सन ऑफ सरदार से हिमी श्रीसामिया के संगीत निर्देशन में गीतकार समीर के बोल। गायक कलाकार हैं मीका सिंह, भव्या पंडित और यो यो हनी सिंह।

घर में संगीत का माहौल होने से मीका सिंह ने बचपन में ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। महज 8 साल की उम्र से ही तबला, हारमोनियम और गिटार बजाने का बेहद शौक था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था और कीर्तन गायक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत कर दी थी। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले आइए सुने संगीतकार सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में आईपी सिंह की गीत रचना। आवाज दे रहे हैं सचिन जिगर और मीका सिंह। फिल्म का नाम है आंख मिचौली।

फौजी दोस्तों मीका ने अपना पहला सोलो एल्बम सावन में लग गई आग 21 साल की उम्र में निकाला था। उसके बाद समथिंग समथिंग, इश्क ब्रांडी जैसे गाने गाकर युवा वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अपने जीवन के फिल्मी करियर में मीका सिंह ने कई बेहतरीन गाने गाए, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। गायकी के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया। मीका सिंह ने पंजाबी फिल्म रैत कपूर में माइकल की भूमिका और हाल ही की फिल्म बलविंदर सिंह फेमस हो गया में बलविंदर का किरदार निभाया। चर्चा आगे जारी रहेगी, अभी आइए सुने साल 2015 की प्रसिद्ध फिल्म किक का गाना, जिसे सुरों से सजाया है मीका सिंह और पलक मुच्छल ने। कुमार और शब्बीर अहमद की कलम ने इस गीत को जन्म दिया और संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट से करने वाले मीका सिंह ने मराठी, बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी गाने गाए हैं। कई टेलीविजन शोज में जज की भूमिका में भी नजर आए। बॉलीवुड में सन 2007 में बनी फिल्म जब वी मेट के गाने गाकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। इसके बाद विभिन्न फिल्मों में कई ब्लॉकबस्टर गाने गाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आइए सुने मनोज मुंतशिर की गीत रचना फिल्म सरफिरा से, जो 2024 में बनी थी। अपने साथियों के साथ स्वर दे रहे हैं मीका सिंह और संगीतकार है जीवी प्रकाश कुमार।

फौजी दोस्तों, मीका सिंह बॉलीवुड के सबसे ऊर्जावान और लोकप्रिय गायकों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी अनूठी आवाज और भांगड़ा शैली से बॉलीवुड को कई सुपरहिट चार्ट बस्टर और गाने दिए। अपने लाइव कंसर्ट और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बेहद मशहूर हैं, जिसे भारी संख्या में दर्शक शामिल होते हैं। अगला गीत आइए सुनते हैं, सुनिधि चौहान, मीका सिंह, साजिद खान, शंकर महादेवन और अरुण इंगले के स्वरों में फिल्म हाउसफुल के गाने। गीत के बोल लिखे हैं गीतकार समीर ने और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

0: और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं दोस्तों, बीजू शाह के संगीत निर्देशन में फिल्म सिम्बा का गीत। शब्बीर अहमद के शब्दों को आवाजें दे रहे हैं नेहा कक्कर, मीका सिंह और कुमार सानू।
1: ओ गॉड, वन मोर।

इसी गीत के साथ ही आज का स्वर्य गाथा यही समाप्त होता है। हमारी आप सब से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: कुयु रेका तचत अग्याप लाउ तेत बिन मगाच्यो रुंग युग चोंगला मात खच्यो न अरेका ख्योको युग चोंग अग्याप मनिन कुइन तचत तचत का काम ग काच्यो
1: लस लस
0: लै लै
1: अंद अलोंग रेन सरे अलोंग अरे सा हु अलोंग मिगदो मरिंग ले नंग अरे सा अलोंग डिमांड पोंगरे श्रे जंगयाम
0: फोन चोंग लात बा फिलेम चोंग अग्याप दो बनोंग छु फोन चोंग लात करे अग्याप मुगुन गो बतुल
1: फोन लोम नले डिमांड मुन
0: लै फोन लोम नले डिमांड मुन यु अना काम काम रे आला चुबा बी दोकान चोंका चुबा रोड चोंका काम उलगोला लोम खछु लै ग्याप छुरे फोन कलात मे गोंगरे काम अदिउम दोंगुन छु हुई फोन कलात ग्रे आला ली ग इंग्लिश डिमांड डिमांड मात मे गोंगरे आला बोतल फुंगो कति उलुम चोंग बनोंग छु लै
1: ए ओरेरे ल्यांग रम आला त्योल चोंग लोम मन लोम डिमांड ना दमबा
0: लै त्योल चोंग ल्यांग आला रंगसो ल्यांग त्योल चोंग चोंग ल्यांग मनिन अबा किदो ल्यांग चोंग मुगुन आला रंगसो ल्यांग अब ल्यांग क्योंग स मुगुन छ ल्यांग स त्योल चोंग ना फोन ला छु आजांग जांग हु अतु ओ ल्यांग जुक बम आजांग जांग अलगनी आ सीजन का सजांग नी ड्यू आ मुड्यू ना ओ नमा नरे त्योल चोंग ना फोन लान करे सम सम न ना काम गो छु आला कोम काम थुप छि मा लै आला अबा तो क्योंग अबा रुट कदो चोंग ग अलमी गोंग नो ते छरेल लोम छरेल मलोम आला ओरे लाई फेलचुल लम लाट करे काम अजुम दु मुनचो
1: अलम उरे फेलचुल लम न अलबर रेंस अलम डिमांड आज दु नंबर यमबा अलम उरे ट्रांसपोर्टेशन निसि न क्लोन छिर सुलम न क्लोंग बम
0: क्लोन छिर लाई आला गाड़ी चोंग का क्लोंग छु
1: सर्विस गाड़ी
0: सर्विस गाड़ी चोंग का क्योंग छ सर्विस गाड़ी का क्लोंग छु
1: फोन नंबर ओलम न
0: लाई फोन नंबर ओलम न बी न कांटेक्ट मात न ओलम न बी छु लाई
1: ए लोगों त रेंस अलम अरे हु जु तोंग कला आजक्ता जक दु नंबर अलम along english karinga ka maximum minimum decision
0: lai lai lai
1: ren chari season ka ka duthinga ka maximum sa na minimum sa income la sate chat mun ka along season ajak ni ba sate chat thop ka along marketing decision
0: lai lai
1: marketing business la chu marketing ajak mungun ba tsat ajak mojok ba re minimum sate chat ren na nam ka along season rel kar hudut par sate chat kom yukut
0: are season chalong li tsat kat adium jok mi gong le lai tsat adium season yang ne adium jok are mein चुंगबुर खामकी बुर चोंगबुर बम्बारे तंत्र खासाम जांगरे लाट खचले एप्रोक्स करे अटेट लाइ अला तचत काम मुदुन अला छरेल ओजांग अला क्योंग चोंग काला क्योंग चोंग रंग सर ल्यांग का क्योंग चोंग का कंदंग खुसु चोंग अग्याप अखाम मपात मि गोंगना अग्याप मला टोंग ठोक का चफंगो लाइ ले तचत लाइ खाका चफंगो ला छले
1: ए अलोंग अरे सा अलोंग उलोगोंग रेन नरे अलोंग अरे हुजु तोंग लो मनाला अलोंग इनकम ता अजक दुम नंबो
0: इ लाइ लाइ लाइ
1: alang arisa kom lom nanra ren nar shishu ka jartap machu
0: ari kom lom na la tuala kuyu gyap shu ta la kilang kyung lyang ka jung yuk mat buni an kuyu ta la jung yuk mat plam nin ari kom lom na re ala azom chong kam azom chong ju hu chong par shu an film dum chong par dam shu film len top chong shu ni pu tol chong lyang shu amak adok chong ka ओजांग चोंग करे आला को मारे दो जुरथाप माचो
1: ए अरे दो रोटेशन
0: माचो लाई अरे दो लाई लाई
1: अरे से लिप का जिमेन रेन नरा लोंग हु जु तोंग ता रेन सा लोंग मीन विशन ए मीन प्रोफेशनल लोंग एग्रीकल्चर
0: अरे
1: रेन आलो मैडम को अरे से लिप लिप करे जिमेन कुमदुंग यो कृषि शु मैडम रेन ने बी थ्यांग से चोंग अलोम रा
0: लाई लाई आला अरे का अरे से लिप लिप का यो करे आला चलोंग दो गुनली आला हु रे अरे हु जु तोंग अदुम का योग गम अरे हम ने तचो दगा बिन मगा तचो तचो कंग गोंगुन शो ना रे करे आला जोंसो त कुई तो बा काम काम सीजन लात अरे तचो लात गरे जो चोंग काम काम चोक शो मोंग चोंग चोक अन तचो क उलो मा छु अन कु चोंग चोंग काम कु चोंग ता ला कुयु हु काम जु मि गोंग द काम आ काम चोक खत गोंग अदिउ मुन छु
1: अलोंग अरे इनका त अलोंग रेन ना जो चोक शो मोंग चोंग चोक शो लिखि अरे से production ya ya ren chong na long kin le yang kyum ka si bara long mong chok kun chung zo chok bare gyap shu jam zom silin a gyap shu re long ya ra long ku yo pal zom na makat ore lom do long amak tok ka shu ka chi ya rok pong ore lom to zok shu along ting song to chek re ren na ore sa production re marketing sa liu ka ren na ore zo pong re dyang na ul shong o an mong ti pong dyang na ul shong ki u te ka thom shong
0: ala mong sa zo chong ta la kam kam छरेल जिहु चोंग काम मनिन बम ओलो मात ब काम जोम गा छु लाइ दंग ना कोम चोंग लाइ आला मोंग चोंग कुयु काम काम आला मोंग ती चोंग काम काम निक्तो बना उल अना जो चोंग ना काम काम कुइ रे आला ताबा काम ओरि मा जो तुक मोर जो थ्यांग छु तुक मोर जो रे अबा क्यों का काम काम अबा रे बाजार चोंग ग होम चोंग बियु ना उलमि गोंग ने काम लाइ अजुम दुम छु लाइ
1: काम काम उल नला कोम
0: लाइ उरि लोम नला काम काम उल ना कोम जुक बम लाइ
1: अलोंग फोकते का रेन नो मनरा रे अलोंग जुंग लोम मनरा लोंग हु जु तोंग का रे जंगसा काम लेन टॉप पुंग शु थुप तुंग यो
0: लेन टॉप लाइ लाइ काम थुप इन Stop in Zong Kuyum Hudum read Bobade, who read a shenlaba, chul salyansa, huzanka yo, abasa huzanka mudokpa, abakuilyanka the third mimilnapo, umfat zong, submutzong mimilnapo, who read a gunla magnon, and hudum urekareguna, lota tignil choshen a safala mat, a zukmana life, safa kyopto, benare, are chini zong shitin to nare ure hudum gala, la kuilota re abasa the hudula tapnanga, lyansa hudule.
1: Along sedek kuna rencong sading nam kyo bada hulur along no konye cha tongye cha ni sho lem along li li ka li sa hu sna ra pon jok sa hu along ore de kwin sulom ne thak chu
0: ore hu de ala ala atu ajuk bon bore kam payor payor chen ngun chu
1: ore de
0: li sa hu lai ore de kam ajuk kuch an kam hu anok anok chen lat ore hu de kam atu ore na re anok anok hu lat bun atu te yang ma plen an are ajuk le hu kam payor payor chen ni sho lai
1: ore re khot ore jap chi ore puyor puyor bure do jut gat lai e ore re along anok bure ponjok bunjok lai lai ponjok lai lai ponjok ore re utesara ajuk re mun bute sara ajuk re hu yang atu chong balat mayon lai e along rensa along lintong kre along leang kyung ka bambu aku anom ing song kre along re hu ju tong kre rensa experience sanang sing kre shu ashok lin khuni
0: Ala Rita La Renchonka La Arikari Ala Huju Migong Nechalong Dolly to Chong Lakama Gab Bin Magat, Hu Adum Hu Kaute Bin Magat, Kam Kam, Dom Zuk Nanyen to Migong Langun, Time to Chertum Go Dom Zuk, Dolom Shit Nyen to Laulomat Bulangun, Ala Huju Chirek Sum Kare Kam, Sum the Adum Yo, Lai Ute Kitukla Machine, Lai Ubina Uzang Yo Kasumre Ubina Re Hu Hure Lai Ala Huju Chisare Ala Hu Dom Chong Zuk Naja Tomle Migong. Hu tong re chorel hu re ala alum li dong na la chu li dong alum rel nyet lan chre kuina alum mana hudum ga thu mu mat mana hiu ma cham thu bna ore hu dong kuina sibi juk thung ni ore ka ang nong ga hiu ma thap nyon ga chu ore thap nyong na hu ore wan kur thu bna re layet non chu hu ore lanong hu ore lanong thu bna dob lokal jang ka tyol ta lung la chu nye sam ulung lung la chu lai ulung lung lan chre hu chong ka ta lung lat non chu lai ore chong lung lan kam thu nam ka jang labutro ko kyok hudum la lota dutleng chalota uri hudum la kuin lota la sa long na philba ulung la la
1: abun
0: lung so dum juk na kuya bon lam apin nom lota kuyula ulum juk khachu ala kuyu lang kyung ka bambu chong ala ren chong are hudum re juk na re kam kam li chong nyen thu mi gong na la hu chong li dong la dan ga wan khachu na hu kare ala ute kiduk lamanin ala chikam kam ari parche chobotik telem chonglat gore ure chongga kam ure ka kam taksik kyob ga chu ute do lai
1: anare li kara long mocho kata long gun kyo logically ng kung la hu sar long khosim bar rib do magora
0: lai lai
1: long kyo li su kala kam kam along along mana chikup chikup lai chong thang to ko da la phen to mun bo
0: lai na la phen to mun chu lai rib chong la thang to lenji chong la lenji chong ta la uthajang ya jang kam kam mplon ala plo ga ta di mun chu lenji bur chong lai uzang mun chu ane gyap chure koi na re khote te kuchung kuchung chong chok khot gore lai kuchung ku su chong chok khot gore di mun chu hu sa bur plo mi gong re ala hu chong ubi lem nong atu chong kam a gyap la bla chu re te chot ka dut gore an kam a di mun chu
1: hu se ton kare ganem jakshiro logong da re kohot kuhu re kui to chot kare pat khot mi gore ore ganem jakshi yim ba go
0: lai gan len jakshi ana re kui sa sing su chong ka are banjo chong ka re ala asu su po po asu su chong chibi nyot adyum tham ma plon bu liang kare kui na re are kam ki kung chong chok nyen to abur nim chu sa abur plom che chong ana e to kung chong blat na chok tho gra adyum mun chu
1: ma chok kar abur bur
0: abur bur
1: bu kung
0: lai lai lai
1: patu ni ngai po banju
0: lai lai banju
1: kam kam le them thong ga pom
0: ko lai lai lai kam kam le re chong chok en tho gre lai adyu mun chu ala nyot ma plun bu ala dom bling chong rob chong kare abur nim bu kung chong ulom chok en tho gre hu chong kala adyu mun chu
1: ye along along ren chalin tom kada long hu ju tom kala utet ajen ne manin
0: lai lai
1: re long kedo a mi to maring lenga ko part time basis kala kin are ma ka chu
0: lai are kui ma
1: ka chu na long thom tom ana krai sa udo sa long tsa tsa ka kam kye mo
0: ka
1: sa long budum tho bare aton kon
0: จัดดาร์ชูลิกาเลยลังเอ่อเมื่อทำกัดไปยังเอ่อเมื่อนั่นเลยเลยอันนั้นจะลองเล่นนะซุงน้ำลองอัฐโธทอมตงชิวานอัฐโธบังกลอเรียร์ปนจอกทำเชิงไปยังเลยเลยปนจอกทำเชิงปงตึกเฟลปงเชื่อมันลองเติมเลยตึกเฟลสุกูจองเชื่อมันลองเสตินกันเลยทำอัฐโธจุกเลยคุยอัดยุ่งมันเขื่อเชื่อหุ่นเลยตึกเฟลสุกูจองเชื่อมันลองเสตินกันเลยทำอัฐโธจุกเลยคุยอัดยุ่งมันเขื่อเชื่อหุ่นเลยตึกเฟลสุกูจองเชื่อมันลองเสตินกันเลยทำอัฐโธจุกเลยคุยอัดยุ

0: Tato sa lingge chuki lungthi kha gato le pangin mitu dejo pilerim khyabda semanawai ngachi tharingge lerim mi chamchi na chawa insa lingge chuingin sele nga gom shudoi talamsa chuchi tuk dungbale gesa dili le gyuti ki tharingge ne chi hindi ke le semanashe i
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को

0: प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिडियम वेब 213.67 मीटर तथा 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अहिले समय साँझको 6:05 भइसकेको छ र अब प्रस्तुत छ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम। आजको दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले लिएर आएका छौं स्वरोजगारको निम्ति जैविक खेती विषयमा साउथ रेगु रंगलीके तनुजा शर्मासँगको अन्तर्वार्ता।

0: कैलाश पर्वतको आधार शिविर दार्चेन पुगिन्छ। विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक कार्यतालिका अनुसार यस वर्षको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नथुला मार्ग प्रयोग गर्ने 10 टोलीहरूमध्ये पहिलो टोलीको नयाँ दिल्ली पुग्ने मिति भोलि अर्थात 11 जून रहेको छ। यात्रीहरू दिल्लीमा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र चिन्या भिसा प्रक्रिया पूरा गरेर चौथो दिनको बिहान अर्थात 15 जूनको दिन विमान मार्फत बागडोगरा ओर्लन्छन् र त्यही दिन साँझ गाड़ीबाट गान्तोक आइपुग्छन्। पहिलो टोलीले 19 जूनको दिन नथुला पार गरी तिब्बत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछ। यसरी नै दोस्रो टोली 20 जूनमा, तेस्रो टोली 27 जूनमा, चौथो टोली 2 जुलाई, पाँचौं टोली 9 जुलाई, छैटौं टोली 14 जुलाई, सातौं टोली 21 जुलाई, आठौं टोली 26 जुलाई, नौं टोली 2 अगस्त र अन्तिम अर्थात दशौं टोली 7 अगस्तको दिन गान्तोक आइपुग्नेछ। पहिलो टोलीको 2 जुलाईमा यात्रा पूरा हुनेछ भने अन्तिम टोलीले 24 अगस्तमा आफ्नो यात्रा पूरा गर्नेछ। गान्तोक आगमनपछि यात्रीहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सिक्किम सरकारको सिक्किम पर्यटन विकास निगम र राज्य प्रशासनले विशेष व्यवस्था गर्दछ। बागडोगराबाट सिधै गान्तोक आइपुगेर यात्रीहरूले होटलमा विश्राम गर्नेछन्। यहाँ यात्रीहरूको स्वागत र राज्य सरकारका अधिकारीहरूद्वारा ब्रिफिङ सत्र आयोजन गरिन्छ। दोस्रो र तेस्रो दिन गान्तोकबाट अघि बढ़ेर 3 माइल नाकामा कागजपत्र जाँच गरी यात्रीहरूलाई उच्च उचाइको वातावरणसँग घुलमिल गराउन 15 माइल र सेरेथाङमा लगिन्छ। यहाँ योग, हल्का हिँडडोल र मेडिकल जाँच पुनः गरिन्छ।
1: यहाँ पे अपना 2 बेडेड टी बिल्डिङ है, जिसमें 30 यात्री रहेंगे। कल हमारे यात्री 100 बंदे रहेंगे, उसमें हमारा मेडिकल है, किचन है और ऑफिस भी है। अगर बंदा नॉर्मल जगह से आएगा, यहाँ पे 2 दिन माइनस डिग्री रहता है। सेम कंडीशन हमारी हंगू लेक भी है, 2 दिन यहाँ ठहराएंगे, उसके बाद हंगू लेक ले जाएंगे, वहाँ पे 2 दिन, उसके बाद कैलाश यात्रा के लिए अपना यात्री को ले जाएंगे। तैयारी पूरी हमारी जोरों से चल रही है, पूरा कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे फैसिलिटी वही है, जैसे बंदा दूर से आया, मेडिकल के लिए है और डाइनिंग किचन खाने के लिए फैसिलिटी है, योगा के लिए भी है, मल्टी पर्पज भी बनाया गया हुआ है।
0: चौथो दिन पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण सफल भएपछि बिहानै टोलीलाई नथुला सीमा पुर्याइन्छ, जहाँबाट औपचारिक अध्यागमन पूरा गरी टोली तिब्बत तर्फ प्रस्थान गर्दछ।
2: म भारत सरकारको धन्यवाद दिन चाहता हुँ, हैन, सिक्किमको यो अवसर फेरि दोबारा मिल रहा है। तो 2016 कैलाश मानसरोवर होके आया हुँ, तो ये यात्री के लिए एकदम सेफेस्ट और रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है और नजदीक भी है यहाँ से। तो सिक्किम सरकार इसमें पूरा तैयारी में लगे हुए है। पहले यात्री निवास के लिए सिर्फ 2 ही जगह में थे, एक यहाँ पे 17 माइल, ये 10,400 अल्टीट्यूड है, हाइट अल्टीट्यूड ना, फिर उसके बाद में सेराथांग मार्ट बोल के सेराथांग में था। अभी हंगुलेक में भी जोर तोर से अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया गया है, तो ये हम लोग के स्टेट के लिए, सिक्किम के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यात्री फिर दोबारा यहाँ से जाएंगे तो यहाँ का इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा होगा, बढ़ोतरी होगा। सिक्किम ऐसे भी पूरा भारत में माना जाता है कि पूरा शांत जो बॉर्डर स्टेट है, एकदम उसमें सिक्किम एकदम शांत स्टेट है। तो हम सिक्किम सरकार और भारत सरकार को इसमें बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: सिक्किमको नथुला मार्ग भएर गरिने कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एउटा धार्मिक भ्रमण मात्र होइन, यो भारत र चीन बीचको सांस्कृतिक सेतु पनि हो। सिक्किम सरकार र स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि यो मार्ग आर्थिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै गौरवको विषय हो। सरकारी व्यवस्थापन, प्राकृतिक सौन्दर्य र भौतिक सुगमताको त्रिवेणी बनेको यो नथुला मार्ग आध्यात्मिक शक्तिको खोजीमा निस्किने हरेक शिवभक्त र यात्रीका लागि एउटा वरदान प्रमाणित भएको छ।

0: मार्फत पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। त श्रोता, समय बेलुकीको 7:05 भइसकेको छ भने हामी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं यहाँकै फोनमा आधारित रमाइलो कार्यक्रम हेलो श्रोता। त आउनुहोस् कुरा गरौं आजको पहिलो कलरसित। हेलो, नमस्कार, आकाशवाणी गान्तो।
1: नमस्ते दिदी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ दीदी। मनोज नामदेव।
0: मनोज जी।
1: जी दीदी।
0: मनोज नामदेव जी कभी कभी गुम हो जाता है, कभी कभी आ जाते हैं?
1: नहीं दीदी, मैं गुम कहीं नहीं होता हूँ। आपका प्रोग्राम तो बिल्कुल हर कहीं की बुधवार को सुनता हूँ, लेकिन मैं अन्य श्रोताओं को थोड़ा सा मौका दे देता हूँ।
0: मौका देते, ये तो अच्छी बात।
1: मनोज जी, क्योंकि अगर क्योंकि हर बार अगर नहीं लगाता रहूंगा तो जो हमारे नींद श्रोता है और हमारे बहुत खास श्रोता है वो अगर आपके कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो उनको मौका फिर नहीं मिलेगा।
0: ये तो है, ये तो है। मनोज जी, आप फिल्में कितने देखते हैं?
1: दीदी ज्यादा तो नहीं देख पाता मैं, क्योंकि मेरी तो फिर जिंदगी है एकदम बिजी वाली, तो मैं कम देख पाता हूँ दीदी।
0: मतलब किसी हीरो का डायलॉग नहीं बोल पाएंगे ना आप तो?
1: नहीं दीदी, बिल्कुल अगर आप पाओ तो बोल सकता हूँ, क्योंकि
0: अरे, अरे क्यों देर किसका थी, जरूर बोले।
1: तो याद कर ली थोड़ा सा कि नहीं करूँ?
0: जी जी, याद कर ली।
1: क्यों मैं थोड़ा गीत बता दूँ प्लीज? तो दीदी आप सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा किंग अंकल।
0: किंग अंकल,
1: उसमें एक गाना है इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें।
0: तो किसी फिल्म का डायलॉग या किसी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सोच लिया मैंने। एक मूवी है, चलो मूवी का नाम तो नहीं बता रहा मैं, उसमें गाना है कालिया फेंके उस किरण उठाता कभी मैं, ये मेरा पुराना उसूल है।
0: अरे बाप रे, आपका तो वॉइस ही चेंज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटा सा डायलॉग था मगर सच में लगा कि मैं पिक्चर ही देख रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। गाना भी बता दिया, डायलॉग भी सुन लिया आपसे।
1: जी दीदी।
0: तो सुनाते हैं आपको किंग अंकल से गीत।
1: जी, धन्यवाद दीदी आपका।

अमेरिकाले भारतीय नौसेनाका लागि 20 उन्नत क्षमतायुक्त ग्लोबल नेभिगेशन सेटेलाइट सिस्टम जीआवर किन्नका लागि गरे सम्झौतामा हस्ताक्षर अनि राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णद्वारा तृणमूल कंग्रेसकी राज्यसभा सांसद सुस्मिता देवको राजीनामा स्वीकृत। आकाशवाणीबाट सुन्नुहुँदै थियो समाचार पूरा भयो।

0: हेलो आकाशवाणी गान तो।
1: पूनम जी नमस्ते।
0: नमस्कार जी।
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: आपसे भी यही पूछेंगे, फिल्में वगैरह कितने देखते हैं आप? तो लगता है कि बहुत फिल्में देखते हैं, गाना तो बहुत सुनते हैं, वो तो पता है।
1: जी जी पूनम जी, फिल्में तो मैं कम ही देखता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज शाम को हमने फिल्म देखी थी खुदा गवाह।
0: खुदा गवाह।
1: हाँ जी, उसी का गाना सुनना चाहूँगा मैं, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।
0: तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।
1: पूनम जी।
0: जी जी।
1: मेरी लड़की आपसे बात करना चाहती है।
0: जी जी जी जरूर।
1: हेलो।
0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार मैम
0: जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बिंदिया बोल रही हूँ।
0: बिंदिया है आपका नाम जी, कैसी है?
1: अच्छी हूँ मैं, बात करती हूँ।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गर्मी कितना है?
1: गर्मी तो बहुत है
0: बहुत है ना?
1: हाँ, आपके उधर कैसी है गर्मी?
0: गर्मी तो यहाँ तो उतना तो आप लोग के जैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो आज का बात करें तो थोड़ा ठंड है।
1: अच्छा
0: ऐसा है यहाँ पर।
1: हाँ
0: अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत अच्छा लगा।
1: हाँ मैम, मुझे घर से बात कर बहुत अच्छा लगा।
0: जो आप लोग के वहाँ का जगह है, आप लोग के वहाँ पर क्या क्या उगते हैं, वो तो सब प्रेम सिंह सिसोदिया जी बता देते ना।
1: हाँ सर।
0: तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छे जगह पर है आप लोग।
1: मैं पापा के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: जी सुनते है ना।
1: हाँ
0: बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी है आप।
1: हाँ थैंक यू मैम।
2: हेलो
0: जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके उनसे।
2: जी हम सब मतलब मोबाइल ऐप से कार्यक्रम
0: जी सुनते हैं ना।
2: जी और इनको भी बात करने का तरीका सिखा रहा हूँ, तो ये भी सीख रहे हैं, आगे से ये कॉल करेंगे फिर आपको।
0: जरूर जरूर
2: जी।
0: अच्छा लगा, अच्छा लगा,
2: थैंक यू सो मच।
0: हेलो आकाशवाणी कांतो।
3: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: अमर
3: लतीफ अहमद रैना।
0: ओ लतीफ अहमद रैना, अहमद रैना। लतीफ का मतलब क्या है?
3: लुतु
0: मतलब
3: मजा।
0: मजा। ओ
3: हाँ जी,
0: फिर तो बहुत अच्छा नाम है तो आपका, एकदम अलग।
3: हाँ एकदम अलग नाम
0: जी।
3: आज लगभग बहुत महीनों के बाद मेरा कॉल लगा।
0: जी जी जी, दो तीन दो महीने जैसे हो गए शायद।
3: हाँ मेरा रिक्वेस्ट ये है लिस्टरों से, अगर वो एक एक हफ्ते 15 दिन के बाद कॉल लगाए सभी को मौका मिलेगा।
0: जी जी, ये तो है, सभी का अंडरस्टैंडिंग कर चलने से सबको मौका मिलेगा। कश्मीर में क्या चल रहा है अभी?
3: अभी तो मौसम ठीक है।
0: ठीक है ना, वहाँ पर भी बहुत ठंड पड़ता है, गर्मी पड़ता है, ऐसा होता है ना?
3: अब यहाँ गर्मी लगभग 27-28 गर्मी, इतना गर्मी।
0: हम लोग का भी यहाँ इतना ही, ज्यादा होने से इतना ही होता है।
3: वहाँ सिक्किम में कैसा गर्मी है?
0: यहाँ पर भी ज्यादा गर्मी होने से ऐसे 25-26-27 ऐसा ही होता है, एकदम मैक्सिमम होने से 30 हो जाते हैं।
3: अच्छा 30
0: जी, न मगर उससे ऊपर तो मुझे अभी तक पता नहीं है, मतलब एक ही जैसा है ना उधर इधर। अभी इधर तो एकदम से पर्यटकों का आगमन बहुत हो रहा है।
3: यहाँ पे भी मैडम इतना पर्यटक आते हैं इस समय, बहुत सारा रश लगा है।
0: ऐसा ही। हाँ यहाँ पर भी बहुत सारा रश लगा है, ऐसा ही है, क्योंकि उधर भी इधर भी थोड़ा ठंड का जगह है तो पर्यटक लोग घूमने आ जाते हैं।
3: वहाँ क्या मैडम देखने के लिए?
0: यहाँ तो पहाड़ हिल एरिया है, यहाँ पर तो आप लेक, बहुत बड़ा बड़ा लेक देख सकते है, यहाँ पर बर्फ दिख सकते हैं, ऐसे ही
3: जैसा तो कश्मीर में ऐसा है।
0: मगर कश्मीर में तो बहुत बड़ा बड़ा झील है ना।
3: हाँ।
0: जैसे वहाँ पर आप लोग का प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ पर भी ऐसा ही।
3: डल झील
0: है, वहाँ पर ट्यूलिप गार्डन है, एकदम नेचुरल
3: कश्मीर है, ऐसा वो भी
0: है। अच्छा लगा कश्मीर के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लिया। तो लतीश जी बताइए, गाना कौन सा सुना है आज?
3: मुझे सुना है अलका याद की आवाज में खुदा गवाह फिल्म का।
0: खुदा गवाह कौन सा गीत? वो
3: इसमें कोई भी सुनाइए अलका की आवाज में खुदा गवाह फिल्म।
0: खुदा गवाह फिल्म का क्या है कि अभी आपसे पहले भी प्रेम सिंह सिसोदिया जी ने खुदा गवाह फिल्म से ही बोला, तो दोनों के फरमाइश में सुनाते हैं फिल्म खुदा गवाह से ये गीत।
3: चलो ठीक है
0: जी, धन्यवाद, रखते हैं, फिर से फोन कीजिएगा।

0: हेलो आकाश विनिकांतो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहा
1: से बात कर रहे हैं? दीदी मैं धीरज रबारी बात कर रहा हूँ।
0: धीरज जी,
1: मौसम कैसा है गंगटोक में?
0: गंगटोक का मौसम तो अभी बहुत अच्छा है। आज तो और भी थोड़ा सा धूप कम था, थोड़ा ठंड।
1: यहाँ बादल छाए हैं, हम बारिश का इंतजार करते हैं। अगर कहीं बारिश मिल जाए तो बोलना कि गुजरात में चले जाए।
0: नहीं, बादल छाने से तो थोड़ा सा आप लोग को गर्मी से राहत मिल जाते हैं ना?
1: राहत मिलेगा, राहत मिलेगी,
0: तब तो अच्छा है फिर तो।
1: और हम जो योग नहीं कर सकते तो कोई नहीं, लेकिन पैदल चल तो सकते हैं ना शरीर अच्छा रखने के लिए।
0: ये तो है,
1: क्योंकि योग करने में थोड़ा समय निकलना पड़ता है। अगर आप हमारे पास समय नहीं है, अगर हम कोई कार्यस्थल पर जा रहे तो अगर हो सके तो पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें से भी हमें शरीर को बहुत शारीरिक कसरत मिल सकती है।
0: मिल सकते हैं, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है।
1: और अगर खेत नजीक है तो खेतों में भी कोई व्हीकल लेकर ना जाए और वैसे चले जाए तो वहाँ भी कसरत हो सकती है। अगर हो सके तो हमारे जो पशु है, भैंस है, गाय है, उनको अगर घास चारा डाले, उनको थोड़ा घुमाए तो भी शारीरिक कसरत हो सकती है।
0: हो सकती है, मतलब ऐसा है ना, मन करने से जिसमें भी हो जाता है, मन होना चाहिए ना।
1: हाँ, मन स्वस्थ और तन स्वस्थ, सब कुछ स्वस्थ।

0: हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं स्वास्थ्य ही धन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छी अच्छी बात करते हैं दीदी।
0: धन्यवाद। ये तो मैं आप लोग से सीखती हूँ।
1: नहीं, हम आपसे सीखते हैं।
0: अच्छा लगता है, मगर ये कार्यक्रम यही है ना, आप मैं आप लोग से सीखती हूँ, आप लोग मुझसे सीखती है, तो यही है। अच्छा लगा धीरज जी ने फोन किया, अच्छी अच्छी बातें भी बता दिया। बताइए फिर गाना कौन सा सुना है आपको?
1: आज गाना सुनना है आराधना फिल्म का, कोरा कागज था ये मन मेरा, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज। और ये फरमाइश हमारे ग्रुप के फोन इन ग्रुप है हमारा, 100 से ऊपर है उनको डेलीगेट रहेगा और आपको भी।
0: जी जी धन्यवाद, इसे फोन करते रहेगा, प्यारी प्यारी बातें बताते रहेगा।
1: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगल।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो, हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जबलपुर यूपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा, बहुत दिनों बाद मैम बात हो रही।
0: अशोक सिंह जी?
1: जी मोनम जी है।
0: अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है।
1: हाँ बहुत पहले बात हुई है,
0: बहुत पहले, बहुत पहले
1: जी। मैडम कैसा मौसम है वहाँ का?
0: यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है अभी।
1: इधर तो कल बारिश हुई तो थोड़ा सा बदला है, मगर धूप है।
0: राहत तो मिल गए थोड़ा गर्मी से।
1: जी जी, थोड़ा सा तापमान नीचे आ गया। जी तो मैडम अच्छा लग रहा है आपसे बात हो रही है।
0: जी बहुत महीनों बाद कॉल किया ना आपने।
1: जी लग ही नहीं रहा, लगाते तो है।
0: फोन नहीं लगते
1: जी, अब सब एक साथ कई स्टेशनों में लगाना पड़ता है। जहाँ लग जाए फिर।
0: जी जी
1: जी, तो मैडम आज लग गया तो खुशी हो रही है।
0: जी
1: सुनवा दीजिए सन्यासी पिक्चर का।
0: सन्यासी,
1: ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता,
0: गीता का ज्ञान।
1: आप और सभी सुनने वाले जो गम टोक के जब हेलो फरमाइश।
0: जी धन्यवाद, अच्छा लग

0: इतने दिनों बाद फोन किया,
1: जी
0: आपसे बात हो पाई।
1: जी जनाब, मेरे को भी अच्छा लगा आपसे, दिल से धन्यवाद।
0: धन्यवाद, इसे फोन करते
1: रहिएगा। नमस्कार, हाँ जी।

0: हेलो आकाशवाणी गांतो।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी हम धेमाजी असम जुनाई मिसा की तरफ से बिमल बसुंधर बोल रहे हैं मैम।
0: बिमल जी
1: जी कैसा है मैम? अच्छा है ना?
0: बहुत अच्छा है, आप लोग भी ठीक होंगे?
1: जी मैम ठीक है। अच्छा
0: क्या चल रहा है काम धंधा?
1: जी मैम मैं दुकान में सिलाई काम करता हूँ।
0: अच्छे से चल रहा है काम?
1: जी जैसे भी चल रहा है मैम, और खेती का सब भी जुड़ा हुआ है।
0: तो
1: आप मैम हमको गाना सुना है दिल वाले का, कितना हसीन है चेहरा, ये गाना
0: दिल वाले का?
1: जी जी जी
0: कितना हसीन चेहरा,
1: कितनी हसीन है चेहरा, ये गाना। ये गाना को हम मैम डेडिकेट करना चाहते मेरे दोस्तों के लिए।
0: जी जरूर।
1: हम लोग का है अमोल भुसमरे है, फाल्कन मुंडा है, रमेश पात्र है, रमेश प्रजापति है, और धर्मवीर है, राकेश है, पूरण वर्मा है, बहुत हम लोग का सोचा है सबके लिए। और हम लोग का ओनाकर ग्रुप है, फाल्कन ये चंद्रकांत टाइट है, विनोद गोगोई, अजित कुमार हरम्मा, सबके लिए मैम।
0: जी जी जी विमल बासु मुतारी जी की तरफ से सुनाते हैं फिल्म दिलवाले से ये गीत सभी के लिए।
1: धन्यवाद।

0: श्रोता तिन्जेल प्रस्तुत कार्यक्रम सुर संसार अन्तर्गत पण्डित कुमार गन्धर्वबाट शास्त्रीय गायन खयाल राग देश हामी आकाशवाणी गान्तोकको रात्रि प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, समय यस बेला रात्रिको 8:45 हुनै लागेको छ र अबको केही क्षणमै आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने

0: लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के

0: राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका

0: इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amaravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति,

0: किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता, बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़े पैगाम लगे, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
0: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
1: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांधकर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक

0: व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने, यहां आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था, सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइन्स खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा, और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि किसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को

0: हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह के आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है। उसमें अप टू डेट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफें एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में
1: जी। कुछ

0: और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
1: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहां सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहां पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इम्पोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इम्प्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में

0: अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहां, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय

0: शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है, जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भारत, सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए और भारतीय भविष्य, भारत नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है, कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं, वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।